0: ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଦ ନାହିଁ ସେ ଯେ ଗମନ କର ଏ କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ମନ ଶୁଣି, ଚକ୍ଷୁ ତାର ନାହିଁ ତିନି ପୁର ଦେଖେ, ଜୁଆ ନାହିଁ ସ୍ୱାଦୁ ମଣେ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ଫରହତ ନାଜ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना

0: ग्रहण किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक।
2: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
3: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सेहिथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितिलि, एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहा वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढी पई रहिथाय। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आरंभ करूछु विशेष वंदना।
5: तथा रूढ़ कालिया सांदंक दर्शन कले पुनर्जन्म हुए नहीं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि प्रभु बड़ भाई आउ भौनी सहित बुली जाइथिले माउसी घर को। आज प्रभुंकर बाहुड़ा यात्रा आसिला बेलकु जेमिति तरतर, गला बेलकु भी सेमिति तरतर। माउसी हाथ परसा खाई प्रभु अति आनंद फेरिबे। रथ उपरे तांकु देखिदेले भक्तर पेट पूरी जाए। सेथिपाई भक्त अलिकरे हे नीलाद्री ईश्वर, आपणंकु दर्शन करिवार सौभाग्यरु मते केबे वंचित करिवे नाही।

0: आकाशवाणी कटक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀର।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूँ।
1: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
1: पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और

0: शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को ओड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र

कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सेहत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the

ब्रह्मोऽस्मि नित्यम्। श्रोता बंधु, महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथंकर दिव्य श्रीक्षेत्र धामरे जो परम पावन धाम आज लीला लगी बाहुड़ा जात्रार लीला आपण माने श्रवण करुथिले आमर वरेण्य घोषक मानंक पाखरु क्षेत्रर महिमा सहित श्रीक्षेत्रर परिवेश सहित आपण मानकु से माने जोडुथिले। तेबे आमर एई बळगंडी छक निकटरे जो परिवेश बड़दांडर रहिछि आपण माने अभिभूत हेबे से परिवेश सहित मिसिले। प्रथमरे एई क्षेत्रर एई स्थानर जो विशेषता रहिछि जे कि भक्त सालबेग जे महाप्रभु को आकुल प्रार्थना करी कहिथिले आहे नील शैल प्रबल मत बारण मो आरत नलिनी बनकु कल दल। से महाप्रभु को जो प्रार्थना करिथिले आकुल निवेदन महाप्रभुंकर दिव्य नंदी घोष अटकी जाइथिला से कथा एई आमर केन्द्र आग

नृसिंह मंदिर जहां को वर्तमान आम यज्ञ नृसिंह बोली कहू जो यज्ञ नृसिंह मूर्ति परिकल्पन आम कहे जे कोल लक्ष्मी मस्तक अहंत आमर जो टिके आगु आम आलोचना करुले जे लक्ष्मी रोषशाला जो रही श्रीमंदिर रोषे सब रोष कर रोसे करप मंडप लक्ष्मी रही कारण जो यज्ञनाथ यज्ञ नारायण तांकर कोल लक्ष्मी मस्तक अनंत।

0: लक्ष्मी रही कारण जो यज्ञ नाथ यज्ञ नारायण तांकर कुळरे लक्ष्मी मस्तक नंद ये होंगे आदि नृसिंह एवं प्रथम जजाति केशरी यही स्थापन कला परे ये क्षेत्र नाहीची पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र अधिवासी होंगे प्रथमतः जे नृसिंह दशवतार भितर चतुर्थ अवतार होची नृसिंह अवतार जो नृसिंह को आदि नृसिंह भाव देखु आउ जे नृसिंह अच्छा वर्तमान जो शहे हाथ उच्चर देउल जो रही वर्तमान देउल दक्षिण पटरे जो मुक्त मंडप को लागिकिरी जो नृसिंह अच्छा से होंगे विदारण नृसिंह आदि नृसिंह तेनाली नृसिंह होंगे मूल सत्ययुगर जो नृसिंह कथा कहला से अनुसार यही क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाए यही कथार परवर्त धारा बरणी प्रदान करने मु प्रताप त्रिपाठी को नवेदन करुच्ची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: पदात पदात श्रेष्ठतमः क्रमात् परम पावनः सिंधु तेरे तुजो ब्रह्मन राजते नील पर्वत से नील पर्वत रे नील कंदर रे महाप्रभुंकर दिव्य लीला सबुबले श्रद्धालु भक्तटीए वर्ष तमाम देखुवा बेले जो अवकाश मिली नवदिनात्मक यात्रा श्री गुंडीचा यात्रा से स्वतंत्र भाव देखापी तार ठाकुर को से धाई आसी कहीं से जाणी ये हूँ गोटे अवकाश जहा दुर्लभ आपण मैने श्रवण कर नीलकंदर दर्शन आड़प मंडल पर दर्शन के पुण्य प्रद आते स्वतंत्र रही आड़प मंडपर दर्शन रल बा महाप्रभुंकर आशीर्वाद तेरे श्रोता बंधु ये हूँ महाप्रभुंकर बाहुड़ा जत्रार वर्तमान परिवेश जहाँ रही सूर्यदेवंकर टिके टिके आगमन मंद मंद पवन प्रवाहित आउ मेघर मुक्त आकाश वर्तमान तेणु समस्ते विचरण करुछंती आनंद उल्लास रे सते जेपरी तांकर मनर ठाकुर मनुआ ठाकुर आउ किछि समयर जो अपेक्षा परे से माने से घंट घंटार निनाद श्रवण करिवे आउ निजकु धन्य करिवे कहिबाकु गले नवधा भक्तिर स्रोत वर्तमान प्रवाहित होउछि श्रीक्षेत्र रे एई बडदंड रे आउ सेई स्रोत रे अवगाहन करुछंती समस्त श्रद्धालु भक्त माने आपण माने जानंती श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम कौन बा अभाव अच्छी एटी श्रवण करुछंती महाप्रभुंकर कथा को वंदना करुछंती महाप्रभु को अर्चना करुछंती सेवायत माने 119 प्रकार सेवा विशेष करी गोष्ठीगत सेवा उत्सव स्वयं लीलें श्रीगुंडीचा यात्रा रे अर्पण करा जाए गोटे किसी कम रही सेवा तेणु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आउ समस्ते चिंता करुछंती सेई जनार्दन प्रभु तुम श्रीमुख केते बेले आमे देखिबु एई प्रकार कहिबाकु गले ए नवधा भक्तिर जो पवित्र जलरे पवित्र अवगाहन करुछंती श्रद्धालु भक्त माने मनरे उल्लास उद्दीपना आमे स्पष्ट भावरे पारि पारुछु मनर अवस्था को श्रद्धालु भक्त माने केऊ माने कहुछंती आमे श्रीमंदिर को टिके वर्तमान रहिथिब स्वतंत्रता थी वर्तमान दर्शन करने तेणु श्रीमंदिर को चली जावा प्रथम आउ कही कई भावुंट आम आड़प मंडप आड़ को जी आम जगह टी ठीक भाव में पाईगले आम महाप्रभु पहंडी दर्शन करवा रथ टणारे भाग ने प्रकार मनर कथा को किए बुझ तेणु धीरे धीरे सहस्र संख्यार आम केन्द्र आगरे श्रद्धालु मानकर जो समागम से महाप्रभुंकर दिव्य लीला को बारी पारुछु प्रभु केते महिमा मय ठाकुर आपण प्रकृतरे आपण मनीष पर यदि लीला करिन थांते मनीष माने एते आग्रह करिन थांते खोला बड़दांडरे ठिया होई खरा वर्षा को समस्त प्रकार शीत काकर को कष्ट को सहिबारे ए भक्त केवल आपणक दर्शन को गुरुत्व देउछि वर्तमान आम केन्द्र आगरे अनेक जो स्वेच्छासेवी दल माने से माने तांकर स्वतंत्र भाव जाउछंती श्रृंखला रक्षा करने भक्त मानू सेवा जोगे देवाई 380 प्रकार जो सेवा

जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा केवल एक पर्व नुह बर यह हूँ लक्ष लक्ष श्रद्धालु आस्था विश्वास और भक्ति भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यह पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मान सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्त दायित्व से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन हवा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िए दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवा को पड़िबो। जेमिति तटका खाद्य खांतु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करंतु। बाहर खोला रे बिक्री होतबा खाद्य कृत्रिम रंग दिया खाद्य बासी और दुर्गंध होतबा खाद्य माछी बसुतबा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदो खांतु नहीं। खाद्य खाइबा पूर्वरु एवं परे तथा शौच हवा परे निज हाथ को साबुन भल भाव धुंतु। शरीर जल शुष्कतारु रक्षा पाइबा आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पियंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करंतु एवं परिष्कार परिच्छन्न रहंतु। अळिया आवर्जना तथा बळका खाद्य एणे तेणे न पकाई डस्टबिन व्यवहार करंतु। जरूरीकालीन सहायता पाई पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752221175 रे जोगाजोग करंतु एवं आंबुलांस पाई 108 को कॉल करंतु। जय जगन्नाथ।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा द्वारा जनहितरे जारी।
1: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अति आनंदर कथा आमे वर्तमान देखी पारुचु गोटे शरथावली गोटे भक्त निजक हनुमान बेसरे सुसज्जित करी अति सुंदर भावरे नृत्य करुछंती। एपटे नाकचणा द्वार जो नाकचणा द्वार अपेक्षा करिछंती केतेबेले महाप्रभु एही पथ देई रथारूढ़ हेबा निमन्ते आगमन करिवे। आउ आमे मध्य देखुचु अति सुंदर भावरे गोटे मठ जो मठर प्रत्येक वर्ष गोटे विराट बड़ धूपकाठी करिथांती महाप्रभुंक सेवारे जो धूप एवं धूप प्रदान करिबा पाई तांकर पथ को सुसमित बा कुसुमित करिबा सहित सुगंधित करी ए वातावरण को आहुरी आनंद पवित्र भूतमय करिबा निमन्ते श्रद्धा बाली जो श्रद्धा बाली होउछंती श्रद्धार बाली जहार स्पर्शरे जो जगन्नाथ कोटि कैवल्यनाथंकर स्पर्शरे दाण्डर धूली पवित्र पुण्यमय होइ उठिअछि। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी जाभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तम ईश्वरम। मनीष जीवन रे श्रद्धा हेउछि एक अपरिहार्य वस्तु कारण आम मानक भितरे जदि श्रद्धा रहिबो नाही परस्पर प्रति जदि प्रेम रहिबो नाही तेबे जीवन जीवन होइ रहिबो नाही। सेथि पाइ तो प्रभुंकर बड़ भाई बलभद्रंकर रथ जो रथरे रहिछन्ति दुई गोटी सुख पकी जहा होछन्ति श्रद्धा आ विश्वास कारण प्रत्येक जीव मानक भितरे फल पाइबा जदि आमे आपण ही ननेबा संसार को समस्त को जदि आमर प्रेम रे आमे बांधि न पारिबा तेबे सेई जीवन आहुरी आग को बढ़िबो नाही जहा भगवान मध्य निजे से प्रेम रो भावडरी रे बंदा है जी साठी पौटी रो भोग को तुच्छ मणि वर्ष को थरे निश्चित भाव रे यात्रा करुछंती ए गुंडीचा मंडप को बा गुंडीचा मंदिर को जोठी मा माटी परिवार बंधु समस्त सहित से श्रद्धा एवं प्रेम को बांटी आउ ए श्रद्धार प्रेम स्वरूप आज मध्य अनेक श्रद्धालु भक्त ए सरथा बाली रे आसी पहुंची चंती तेबे तांको मुखर सुनिबा से महाप्रभु प्रति रहिथिबा तांकर से अनन्य प्रेम भाव अनुभूति को जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
2: आमे प्रति वर्ष आमे पुरीर जेते नृत्यशिल्पी अच्छु आमे प्रति वर्ष ठाकुरंकर समस्त जानी यात्रा चंदन यात्रा हो गुआली गुआली माने ठाकुरंकर विवाह उत्सव हो रथ यात्रा हो बेल पूर्णमी हो स्नान यात्रा हो आमे सबुबेले ए यात्रा मानकर ठाकुरंक आगरे नृत्य परिवेषण करके आसुछु काहेकि ना आमे भाबु ठाकुरंकठु नाचर आरंभ श्रीमंदिरर नाच कहिले श्रीमंदिरक बुझाए श्रीमंदिरर ठाकुरंक पाखरु ही नाचर आरंभ तेणु आमे समस्ते सेई ठाकुरंक खुशी करिबा पई आमे माने नृत्य परिवेषण करि आसुछु एथि पई तो बहुत खुशी लागे ए प्रथमतः श्रीक्षेत्रवासी द्वितीय रे जने ओडिसी नृत्यशिल्पी करके ठाकुर जन्म देइछन्ति आउ आमे नृत्यशिल्पी हिसाब से आमे भाबु ए पृथ्वी रे केवल ठाकुर ही होछन्ति एकमात्र पुरुष आमे समस्त नारी सेथि पई सेई भाव नै कि आमे तांक पाखरे सजबाज होइके घुंगुर बांधि कि तांक पाखरे नाचु आउ से भाव अवर्णनीय। मु ठाकुरंक पाखे प्रार्थना करे प्रभु प्रति जन्म रे जे पर्यंत जीवन अछि से पर्यंत ए सेवा दउथांतो आमे एमति ठाकुर
3: ଗୀତାଞ୍ଜଳି
4: ମହାରଣା ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଢଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ।
3: ଆପଣ କୋଉ ଦିନ ଠୁ ଆସିଲେଣି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଲା?
4: ଆମର ଆଜି ଆସିବାର କଥା କାଳିଆ ଏମିତି କାଲି ଡୋରି ଲଗେଇଲା ଯେ ଆସିଲୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ବି ଚାହିଁ ରହିଛୁ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ।
3: ଏଇଠି କେତେବେଳୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଶରଦା ବାଲିରେ?
4: ଆସିଲାଣୁ 5:30 ଆସିକିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିଲୁ ଏବେ 6 ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ।
3: ରଥଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ?
4: ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛୁ
3: ରଥଯାତ୍ରାରେ ବି
4: ଦେଖିଛୁ ଆଜି ଫେର ବି ଆସିଛୁ ସେଇ ବାହୁଡ଼ାଟା ଦେଖିବାକୁ ଆର ବର୍ଷ ସୁନା ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିଲୁନୁ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ କାଳିଆକୁ ଭଲ ଦିନ ରାତି ସାରା ଦେଖିଲୁ ଭଲରେ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ତିନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ସେ ବର୍ଷା ବି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ।
3: ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱ ଚକ୍ଷୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ଥିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି?
4: ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେ ଖୁସି ତ ମାନେ ଆମର ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି କାଳିଆ ନାଁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।
3: ଧନ୍ୟବାଦ।

0: स्नातीति अर्धासनी आउ अर्धे आसन श्यासा अर्धासनी अर्ध मान ठीक आपण देखिबे गुंडीचा मंदिर एवं श्रीमंदिर अर्ध भागरे माँ आसन पातिकी बसिंट से हूँ अर्धासनी देवी एवं आमे जेतेबेले देखु स्कंद पुराण रे ए अर्धासनी देवी आउ गोटे परिचय अच्छी से परिचय से हूँ अष्ट चंडी मान भितर अष्ट शक्ति जो अष्ट शक्ति श्रीक्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करूँ से जड़े से सेठारे बसचंती तांको ना अर्धासनी एवं सी सी श्री जगन्नाथ महाप्रभु मौसी से पुणी केमी मौसी तार प्रसंग रही तेज आमर बर्तमान आप पचार ये पोड़पिठा परंपराटा किभली आपण देखिबे जेतेबेले ठाकुर माने आसंती सेतेबेले मौसी अपेक्षा करिथांती मो पिला माने जायचंती से माने फेरिबे फेरिला बेळकु मु ताकु पोड़पिठा खुआइबी तेणु से पोड़पिठा खाइबारे बोधे तांकर आग्रह अछि मौसी जानिचंती सेतिपई से पोड़पिठा प्रस्तुत करंती।
1: अच्छा एके आमर सूचना दबा दरकार पड़िबो जे ये जो पोड़पिठा तार गोटे लौकिक कथा हला जे महाप्रभु को सेनापटा लगे हम 7:30 बेलू 11:30 चार घंटा लगे सेनापटा करवाई पूर्व से टे खेचुड़ी भोग खाई तेणु जितेबले रथ टणाई अर्धासनी पाख जीव से तीन टा पखापाखी तीन टा चार ऊपर हो तेणु चारिटा उपर हो गला लु टिके भोक होतुबो
0: पिला मानको टिके भोक होबो
1: भोक होबो तेणु जलखिया खाइबा समय जेटा टिके सकाळे खेचुडी भोग जिन्न होई जीवनी सेइति पई से गोटे लोकाचार कथा आ गोटे बड कथा सेथिरे डॉक्टर दास जोटा के अध्ययन रु मध्य जणा पडिछि जे मूलतः तो सबर पूजित देवता से थिले एवं सबर तार वन्य जंतु शिकार करिकिरि से तार सब देवतांकु जे भली भाबरे मांस भोग अर्पण करथुला से मांस भोगर गोटे संस्कृतायित रूप गोटे मार्जित रूप भाव आम पोड़पिठाटा को दौचु एवं मस हूँ बिरी तेणु ये जो बिरी पिठा आउ छेना पोड़पिठा यहाँ मध्य सबर मानकर जो मांस भोग से माने करुथिले देवता तार गोटे माने मार्जित रूप बोली आम ग्रहण करी यही शक्ति देवी को अर्धासनी देवी को
0: पोड़पिठा किंतु वास्तविक पोड़ा जाए नहीं कारण श्री जगन्नाथ महाप्रभु कौन से पोड़ा द्रव्य खाती नहीं ये केमिति प्रस्तुत होना देखिए ना किंतु अच्छी पोड़पिठा किंतु वास्तविक पड़े ना यहाँ केमिति प्रस्तुत हुए अटा छेना चीनी इत्यादि पड़ी से चकटा हुए एवं हेरा पंचमी दिन आरंभ हम हेरा पंचमी दिन ठाकुराणी जितेबले जीवे से आरंभ करिवे अटा छेना एवं ता सहित अलैच अलैच इत्यादि खिसमिसी
1: जनता
0: हम जनता केमती हम गोटे माटी हांडी रे बसिब माटी हांडी उपर गोटे पलम घोड़ा हम एवं से पलम एवं माटी हांडी जो जोड़ेई से जोड़ेई रु काले बांफ बाहरी जीव से अटा चकटिकी चारिपट जाक बड़ा हम सात आठ घंटा सीझीबो सात आठ घंटा सीझिला परे से जो द्रव्यटी बाहर ताकू चकटा हम चकटिकी से ताकू कौन करिवे काटिबे खंड खंड करी काटिकी भल घी ताकू छाणीबे छाणी करी ही से या को भोग लगेबे या ना आउचे पोड़ पिठा।
1: वाह बहुत बढ़िया
0: तेणु आमे वर्तमान देखुचे ये पोड़ पिठार प्रस्तुति एवं ये कथा केतेबेले संभव हम शांतनु बाबू जहाँ कहले जे पिला माने आपण ये देखिबे केतेबेले आश्चर्य कथा इठी ये जो तीन ठाकुर बसचंती ये सबुबेले छोट पिला हे जाउचंती ये जगतर कर्ता आपण देखिबे जेतेबेले धनु संक्रांति आसिबो आउ मकर संक्रांति पूर्व दिन पर्यंत ये पूरी पिला आइ जिवे अर्थात माँ जशोदा यांकु भोरु भोरु खुआयाकु देबे आपण देखंतु जहाँ आपण कहले जे इठु गला बेळकु आज सकाळु खाइचंती खेचड़ी टे खाइचंती तापरकु ସେନାପଟା ଲାଗି ହେଲାଣି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ସେନାପଟା ଲାଗି ସେନାପଟା ଲାଗି ପରେ ପୁଣି ଏଠୁ ଯିବେ ହେଲାବେଳକୁ ଏତେବେଳେ ହବ। ମାଉସୀ ମା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ।

0: तेणु अयं ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो बुधे गुणे ही ये एते गुणवान तांकर गुण अवर्णनीय एवं सी होती बलाधिक्यात बलंगविदु तांको तांको ना काहीकि बलभद्र हेछि बलाधिक्यात तांको ठारु बलशाली केही संसार रे नाहंती तेणु सी होती अधिक बल विशिष्ट तथापि सी होती भद्र कि जे सी एते बल सी होती भद्र तेणु आमर कथा अच्छी जहाँ पाखे अधिक बल थी सी क्षमा गुण से विभूषित हब ये पी क्षमा चरई तेणु जहाँ पाखे अधिक बल थी सी क्षमाशील हब सी भद्र हब एक कथा को बलभद्र भगवान शिक्षा दिंती सी धीरे धीरे धीरे धीरे विजय करुछंती जो गुंडीचा मंडपरे से सात दिन धरी गोटे पारिवारिक जीवन अतिवाहित करुथिले आपण देखिबे ए जो ठाकुर माने जेतेबेले रत्न सिंहासन रे थांती सेतेबेले गोटे पारिवारिक जीवन को सुंदर भाव रक्षा करंती देखिबे सेठी पांच प्रकार परिवार रो संपर्क रहिछि आपण देखिबे बल जो बसिछंती रत्न सिंहासन उपरे जो सप्तधा विग्रह श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र देवी सुभद्रा श्री सुदर्शन एवं श्रीदेवी भूदेवी माधव एमानक भितरे आपण देखिबे पांच प्रकार संबंध रहिछि कौन पांच प्रकार संबंध आपण देखिबे आम समाज पई की वार्ता से दौछंती गोटिए पिंडा उपरे गोटिए छात तले एवं गोटिए स्थान रे बसिचंती एई सात जन से माने कौन शिक्षा दौछंती देखंत सिठी दुई भाई अछंती एकाठी तेणु भाई भाई भितरे केमिति संपर्क भाई भाई भितरे संपर्क सृष्टि करिचंती ता भितरे आउ गोटिए भौणी सिठी अछि भाई भौणी भितरे संपर्क भाई भाई भितरे संपर्क भाई भौणी भितरे संपर्क आउ के स्त्री अछंती दुईटी स्त्री तांकर सिठी अछंती स्वामी स्त्री भितर संपर्क केमिति मधुर संपर्क गोटे जगार गोटे छात तले सुसंपर्क स्थापन करी अछंती आउ किए अछंती सेठी अछंती ननंद भाउज ननंद भाउज किए सुभद्रा सुभद्रा अछंती ननंद आउ श्रीदेवी बा महालक्ष्मी अछंती भाउज गोटे घरे ननंद भाउज केमिति चलंती ता मध्य सेठी देखै दैछंती तेणु ये जो संपर्क पांच पांचटा संपर्क सेठारे रहिची तेणु आम भितरे आम समाज रे आम परिवार भितरे केमिति आमे यही मानुकु नेइकरी भाई सहित तो भाई केमिति संपर्क रखिबो भाई सहित तो भौणी केमिति संपर्क रखिबो भाई सहित तो बा स्त्री सहित तो स्वामी केमिति संपर्क रखिबो एवं ननंद सहित तो भाउज केमिति संपर्क रखिबो ये सबु संपर्क एवं दुईटी सौतुणी मध्ये अछंती सौतुणी सौतुणी भितर बाड़िया पिटा होकर मरुचंती किंतु जदि से माने रत्न सिंहासन को टिके देखते तेबे ता भितर मध्य दुई जन जाक शांत होकर अच्छा आउ गोटे अच्छी देड़सुर भाई बो देड़सुर होती बलभद्र भाई बो होती महालक्ष्मी सिठी मध्य चलुचंती गोटे परिवार रे यतिकी पारिवारिक संबंध सृष्टि करिकिर अच्छा इठिक मध्य आसुचंती सही संपर्क एवं मातृभूमि को आसुचंती मातृभूमि रे रहुचंती जन्मभूमि रे सही सुसंपर्क स्थापन करी सारा जगत को यही शिक्षा प्रदान करुचंती
1: वाह बहुत बढ़िया कथा आपण कहुतले ये तो लोकाचारर कथा एवं आमे महाप्रभुंकर लीलारु जो सब वार्ता एवं संदेश सूचना पाइचे ता देहरु उत्पन्न करिचे ता जगतवासींको पई आमे दउचे बड़ ठाकुर बलभद्र पहंटी टी विलंबित तो होती चक्र बनाटी जदिव नागचणा मंडप आग को आसला किंतु घंट घंटार ध्वनि टी कम अच्छी टी विलंबित तो होवार सूचना आम पाक मिलूँ आउ गोटे कथा मु डॉक्टर दास आपन को कहवाक चाहिए ये जो रत्न सिंहासन जो महाप्रभु मान अवस्थित यार गोटे ऐतिहासिक विचार आमको करने पड़ो ये तो लोकाचार विचार आपण कले जो थ्रु गोटे स्पष्ट संदेश एवं बार्ता मिलूची एकत्र सहावस्थान आम केमती करिपारिबा से संपर्क में महाप्रभु आमको बार्ता दौंती आ गोटे बड़ कथा है जे जेतेबेले सुदर्शन महाप्रभु आपण गोटे कथा विचार करूँ जे सुदर्शन महाप्रभु महाप्रभुंकर को

0: जे वर्तमान स्कंदारूढ़ हई माँ को पुत्र माने किपरि भावरे कोलाकृत करि नौछंती सारा विश्व रे ई होची विरल जो दृश्य जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदि करि असि माँ को कोलाकृत कर माँ को आपणे नियो माँ होछंती संसार सबुठारु श्रेष्ठ आज आम एत मानव शिक्षा पाऊे तथापि ये मनीष आज आम बार्धक्य अवस्था माता पिता को नहीं वृद्धाश्रम छाड़ी दौचे ए संस्कृति आम संस्कृति नुहे ए संस्कृति अच्छी विश्व संस्कृति जो संस्कृति जगन्नाथ शिखा मनीष को मानव बोध को शिक्षा दौंस से मातृभूमि मातृभूमि से प्रेम माँ को पाख को तुम वर्षक थे आसुंच तुम्हें माँ का निकट को आस माँ से जो यात्रा ये हूँ परम पावन यात्रा जो यात्रा रे निजे जगत जननी आसी विश्वास प्रतीक बड़ भाई बलभद्र रथ आग माया जहां कमें कहू सी विश्वर्ग आत्म कहीं से सबू संसार को जोड़ू माया विहीन संसार जो माया केवल प्रभु निकट में दि विलीन हो जा तांका निकट में समर्पित भाव है जा जो भावर ठाकुर कारण नोहिबे सर्वज्ञ किंबा ब्रह्म परिवार जानिले निश्चय प्रभु दक्षिणा कुंजर पूर्व जरे पूर्व गच भाव उपजाई भंडी विजय कले प्रभु झुली झुली झुलाई झुलाई ए प्रभु आसुचंती निजे झुली झुली आम हृदय भितर से भावना को जाग्रत करी जो भाव आज भक्त और भगवान को सहित मिलबारे आम श्रद्धावली देखी पारुचु अनेक श्रद्धालु वर्तमान जो मैंने समस्त बसी जाते भितर से भावना एत जाग्रत हो जाए समस्ते दंडा मान जाती हरिबल हूलहुली जय जय गान श्रद्धा बाली प्रकंपित होबे श्रद्धा बालीर ए दृश्य सहित आज गुंडीचा मंडप ठारू जो सिंहद्वार दृश्य आमे माने देखिपारुचु जहाँ देखिपारुना आमर आउ गोटे द्वितीय केन्द्र अच्छी जो बड़ संघटे से बड़ संघ ठारू ए जो बड़दाण्डर जो प्रशस्त भूमि 3 किलोमीटर व्याप्त ताकू आमे तांको ठारू श्रवण करिबा ले जाउछु द्वितीय केन्द्र को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: धन्यवाद सुंदर भाव आलोचना करुले कल्याणी जे वर्तमान जगत जननी कृपामयी माँ सुभद्रा ठाकुरानी वर्तमान जाऊँगी रथ को दर्पदलन रथ देवदलन रथ को एवं ये रथ सुसज्जित अपेक्षा करते आसबे माँ वर्तमान जाऊँगी दर्पदलन रथ को एवं तागरु आयुत पुरुष चक्रराज सुदर्शन महाप्रभु जे कि ब्रह्मांडनाथ ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ बाम पटरे शोभा पाउथिबा जो वर्तमान जो प्रकार आपण देखुचंती पहंडीर दृश्य वर्तमान आमे जोटू अछु वर्तमान भक्त सालबेगंकर समाधि एवं एपटरे अर्धशोषणी माँ मौसी माँ मंदिर एई मझीरे आमे देखुचु धीरे धीरे गहली बढ़िवार लगी धीरे धीरे एवं तांकर मेहना जाई सल्लानी आपण माने सुनी खुशी हेबे जे कि ओडिया जातिर मौडमणि गजपति महाराज चतुर्थ दिव्य सिंह देव जे वर्तमान पुरीर गजपति अछंदी तांकर मेहना को सेमाने नेई सल्लानी वर्तमान बड़गंडी पाखरे तांकर बड़संक पाखरे तांकर मेहना को रखिबे एवं गजपति महाराज कार रे आसीबे सही पर्यंत एवं सेटू दामजान रे जिबे श्रद्धा बाली को तेणु वर्तमान धीरे धीरे गहली लगी वर्तमान पाग जदिओ तीव्र नहीं किंतु लोकों भितर जो आग्रह जो उत्साह से उत्साह जहा पड़ी जाऊँ आसुंच लोक धाड़ी बांधिकी जापट को जापटू एपट को आस गहली चहली लगी गहली चहली लगवापी महाप्रभु कृपा रही कारण बर्तमान आपणकर अग्निश्रम भाई मैंने बर्तमान प्रस्तुत हो गला जलसिंचन करने कारण से दायित्व निर्वाह करते समस्त दायित्व निर्वाह करे हूँ गोटे सामूहिक कार्य ये महोत्सव ये रथजात्रार महोत्सव गुंडीचा जात्रार महोत्सव पतित पावन जात्रार महोत्सव यह भाव में चली न देखिले कहीं जापर ना उपलब्धि करें जाऊ धीरे धीरे बड़दाण्ड भाव समुद्र जनसमुद्र बोली मुझे भाव समुद्र।

0: आलिंगन मुद्रा रे अछन
1: आलिंगन मुद्रा रे सबुबेले आलिंगन मुद्रा रे थिबारु से समस्त भक्त जन को आकर्षित करुचंती आ बोली डाकुचंती जे पताका चंचल जो अबा बोली कहाइछि पापी को डाके डाके पतित पावन बाना समस्त को आ बोली डाकुचि सिया हाथ रे सिना तांकर धरी पकेबा पई हमकु तांकर डेना प्रसारित करचंती तांको बाना मध्य पंचकोशी दूररु चतुर्दिगरु से हमकु आह्वान करुचि जे तू आसे आसे बोली तेणु ये जो वेदांत वेद्य वेदांत प्रतिपादित परम ब्रह्म ताकि हाथ न देकरी आम सहस्र बाहू करीचु जोटा पुरुष सूक्त में कहगला सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद
0: भूमिगम सर्वत
1: सांगुलम तेणु महाप्रभु को जो कहुचि जे सहस्राक्ष सहस्रपाद से सहस्रटा प्रकृत रे सहे हजारे नुहे
0: असंख्य
1: असंख्य
0: असंख्यात वाचक
1: असंख्यात वाचक तेणु महाप्रभुंकर लक्ष लक्ष कोटि कोटि पाद कोटि कोटि हाथ कोटि कोटि आखि तेणु एभली जो परिकल्पना कराई तेणु से महाप्रभु होती जो आमर श्रीजगन्नाथ जहाँ चारि चक्षु को देखिदेले आमर समग्र विश्व ब्रह्मांड ता भितर समाहित हो जबार आम अनुभव करू एवं आम आखि जेतेबेले मध्य सही आखिरे एकाकार हो जाए आमर गोटे अनुभव हुए से आखि बाट देकरी आमर आत्मचैतन्य सते जमी समग्र विश्व आड़ को प्रसारित हो जा तेणु आमर समस्त संकीर्णता आमर समस्त न्यूनता आमर समस्त स्वल्प विचार से समय रे एक व्यापक विचार रे परिवर्तन हो जाए यही हूँ महाप्रभु आखिर महात्म्य कहीं महाप्रभु आखिरे आखि मिसई देवाई आम व्याकुल हूँ कारण महाप्रभु आखिरे आखि मिसाइवा दवा द्वारा आमर संकीर्णता दूरीभूत हुए एवं आम भितर गोटे व्यापक चेतनार अवतरण घटे एवं व्यापक चेतनार एक विश्व चेतनार अवतरण जेतेबेले मनुष्यर हृदय अवतरण हम सेतेबेले मनुष्य एक विश्व चेतना को उत्तरित हो दया करी डॉक्टर नरेश चंद्र दास आपण महाप्रभु संपर्क में दीपद कहतु तापर आम परवर्त धारा बरणी कथा आलोचना
0: करवा ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यतः जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः स्वयम्भो विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः एकमात्र से हे पुरुष जो पुरुष सो वेदेशु पौरुषम सूक्तम वेदरे पुरुष सूक्त है सर्वश्रेष्ठ कहीं लिखिंट जंग शैवा समुपासते शिव इति अनेक संप्रदाय अच्छी ता भितर गोटे शैव संप्रदाय से मानकर आराध्य होती शिव आए प्रभु मध्य शिव हरि एवं हर भितर कौन सी भेद न थाए ब्रह्मेति वेदांति न यही महाप्रभु को वेदांति वाला से माने ब्रह्म बिलिकरी कहती बौद्धा बुद्ध इति बौद्ध धर्मावलंबी माने याकु ही बुद्ध बिलिकरी कहती या होती साक्षात बुद्ध बिलिकरी बौद्ध संप्रदाय उद्घोषणा करती प्रमाण पटव करते नैयायिका षड दर्शन मध्य जो न्याय दर्शन रही से न्याय दर्शनर मूल उत्स हूँ कर्ता तेणु ये होती से न्याय दर्शनर मूल उत्स कर्ता एवं अर्हन नित्यथ जैन शासनरता जो मैंने जैन धर्मावलंबी से मैंने अर्हत भी लिखे आपको कहती ये होती आराध्य अर्हत जी अर्हत सी होती श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं कर्मी मीमांसका मीमांसा दर्शन रे भगवान को कर्मी बोली जो कहा जाए ये होती से ही कर्मी ये ही सब कर्मर प्रतिपादक एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च यही से ही महाप्रभु वेदांत वेद्य महाप्रभु आज नर चेष्टा उपादाय हरिचरति भूतले तेणु आज आम मानक पाखे आम मान को धन्य करवाई आम यही माटी को अंगीकार करी यही माटी को धन्य करी से प्रति वर्ष आसुचंती एवं आम को दर्शन देकरी मुक्ति प्रदान करुचंती मोक्ष।

जय जगन्नाथ। जगद्रनाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं एहा होउछि लक्ष लक्ष श्रद्धालुंकर आस्था विश्वास ओ भक्तिरे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। एही पवित्र रथयात्रा अवसर रे भक्तमानंकर सुस्थता ओ सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्तंकर दायित्व। सेइथिपाई खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन हबा अत्यंत जरूरी। एही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव रे तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़िबो, जेमितिकी तटका खाद्य खांतु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करंतु। बाहर खोल में बिक्री होउथुबा खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होउथुबा खाद्य, माछी बसुथुबा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदौ खांतु नहीं। खाद्य खाइबा पूर्वरु एवं परे तथा शौच हवा परे निज हाथ को साबुन ने भल भाव धुअंतु। शरीर जल शुष्कतारु रक्षा पाइबा आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पियंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करंतु एवं परिष्कार परिच्छन्न रहंतु। अळिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणेतेणे न पकई डस्टबिन व्यवहार करंतु। जरूरीकालीन सहायता पाई पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752

0: नाही नाही
1: ये प्रसिद्ध कवि द्वितीयुगीय कवि दीनकृष्ण दास रचना यारी उपर मध्ये आपण टिके कहिबे जदि आउरी बढ़िया हबो
2: दीनकृष्ण दास जे जगन्नाथ को निकट रे इजको समर्पित कर देथिले एवं तांकर जो रस कल्लळ से प्रभुंकर से लीला को नहीं वर्णना करथिले से दीनकृष्ण दास जे रीतिजुगर कवि जहाँ रीतिजुगर जो आद्य कवि भाव में आम ग्रहण करवा ओडिया साहित्य दीनकृष्ण दास होती से आदि कवि जे ऋतुजुगर प्रभु से भाव चौदह भुवनर जी बार्ता जाणी आज समग्र विश्व को से मधुरता प्रदान करी जे रससिंधु जपरी आज से तट प्रदेश को ग्रास करुची ठीक से हीपरी प्रभुंकर जो मस्तक जो टाहिया आज दोड़ामान होती से टाहिया आज समग्र विश्व को से चतुर्वर्ग प्रदान करपेन्द्र भंज से कम्बुकटक राजा नामे जगन्नाथ चारि बने चौ वर्ग देवाकु समर्थ प्रभु होती से चतुर्वर्ग प्रदान करी जो चतुर्वर्ग प्रदान करी वर्तमान टिके रही जाइछन्ति पचारुथिले आज काहेकि मत टिके पूर्व जन बंधु पचारुथिले आज प्रभु काहेकि विलंब करुछन्ति अरे प्रभु विलंब करुनांति भक्त पाखु जितेबाला आसुचान सी हली हली आसुचान पे चैतन्य महाप्रभु गोटे सुंदर कथाटे लिखिं विश्वम्बर जगन्नाथ के चलाइते पारे आपना इच्छा है जले करित बिहार ए प्रभु को किए नब किए धरव किए टाणब निजे तो प्रभु आज आसार कर आनंदर जाता जो जात्रा हूँ पतित पावन जात्रा सुंदर भाव अच्युतानंद दास कहते अनंत कोटि ब्रह्मांड जार गर्भेली न जापादे चिंतन्ति जोगी ध्याने होई मग्न जहाँको करुणा करु तुहि भाव ग्राही तो पादे पद्मरे सिए बिलीन हुआई प्रभु आपण होउछन्ति अनंत कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर विश्व नियंता त्रिभुवनर पति आपण प्रभु जहाँ को करुणा करिवे ए समग्र विश्व आपणंकर बिना निर्देश रे पत्र टी हलिबा नाही सेई प्रभु आपणंकर इशारा रे आज ये जो यात्रा होची गुंडीचा नामे यात्रा जी होची ख्यात होची गुंडीचा यात्रा नामे ख्यात परम पावनी रथ यात्रा नामे

0: आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंते शुभेंदु कुमार पंडा मुख्य संवाद विरोधी सदस्यों हट्टगोल जारी रहिबारु लोकसभा को सोमवार पर्यंत मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति आज अपराह्न दुईटा पर्यंत राज्यसभा मुलतवी नीट यूजी प्रश्नपत्र प्रघट घटनारे केन्द्र सरकार और जातीय परीक्षण संस्था एनटीए को सत्यपाठ दाखल लागि सुप्रीमकोर्ट निर्देश केन्द्र कैबिनेट रे आज फास्ट ट्रैक अदालत स्थापन संपर्कित चिठा प्रस्ताव उपरे हेबो आलोचना कहिले प्रधानमंत्री एवं श्रीक्षेत्र पुरी रे नवदिनात्मक यात्रा शेष करी आज जन्मवेदी रत्नवेदी को बाहुडुछंती चतुर्धामूर्ति आज पंचम दिन गृह में हट्टगोल जारी रहिबारु लोकसभा को सोमवार पर्यंत मुलतवी रखी प्रथम मुलतवी पर मध्याह्न 12टा लोकसभा सम्मिलित होगा पर संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजू कहते नीट प्रश्नपत्र प्रघट घटन प्रथम दिन सरकार आलोचना प्रस्तुत थी तेज कंग्रेस पक्ष केतक सर्त रखा नहीं संपर्कित आलोचना आगक बढ़िपना श्री रिजिजू कहते समस्त सदस्य विषय आलोचना करने लगे आग्रह प्रकाश कले एक अर्थपूर्ण आलोचना मंत्री कहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह घटना को नहीं कठोर नियम अणाजीव देशवासी को आश्वस्त कर श्री रिजिजू कहते नीट घटन प्रदर्शन कर प्रमुख सक्रिय कर्मी आलोचना उपर गुरुत्वारोप कर सांसद विभिन्न आल देख आलोचना ठार् दूरे जाती तेज यह देशवासी को सकारात्मक बार्ता देवना
1: अनुरोध करता हूं आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: श्री रिजिजू कहते आज कैबिनेट बैठक में प्रश्नपत्र प्रघट घटना परिप्रेक्षी में दृढ़ आईन आने प्रसंग में आलोचना हो श्री रिजिजू गृह कार्य निज दल सदस्य प्रवर्तवा लगी विरोधी दल नेता राहुल गांधी को अनुरोध कर पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल कहते सरकार नीट घटन आलोचना प्रस्तुत थे विरोधी दलगुड़ गृह कार्य चल उचित तेज हट्टगोल जारी रहिबारु लोकसभा को आसंता सोमवार पर्यंत मुलतवी घोषणा कर पूर्वाह्न 11टा लोकसभा आरंभ हवा मात्रे कारगिल युद्ध में प्राणबली भारतीय सेनार दिवंगत जवान उद्देश्य श्रद्धांजलि अर्पण करवाचस्पति ओम बिर्ला कहते चलित वर्ष जुलाई 26 तारीख में कारगिल विजय दिवस को 27 वर्ष पूरण होशर जवान अदम्य साहस शौर्य एवं बलिदान प्रतीक भाव यह दिवस को पालन करवाचस्पति कहते सारा देश मातृभूमि प्रति अमर जवान बलिदान ऋणी रृह कारगिल युद्ध अमर स्मृति में नीरव प्रार्थना करवाचस्पति प्रश्नकाल आरंभ करने लगे चेष्टा करुवा बेले विरोधी सदस्य स्लोगान देवास हट्टगोल कर श्री बिर्ला से गृह कार्य सहयोग करने लगे आहवान देते विरोधी सदस्य से दृष्टि फलस्पति मध्याह 12टा पर्यंत गृह कार्य को मुलतवी रखी
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
0: राज्यसभा को नीट घटना नहीं अपराह 2टा पर्यंत मुलतवी घोषणा करा जाई छी। प्रथम मुलतवी पर मध्याह 12टा रे गृह कार्य स्वाभाविक

0: देखुचु नील रंगर जो सुंदर भाव पानपत्र जो आलट आउ एपटे कला छत्री धला छत्री तार भितर मुझे आम गहन अच्छा डॉक्टर नरेश दास महोदय जहां पाखु आम महाप्रभुंर ए दिव्य लीलार दिव्य जात्रार से सुंदर वर्णना को आम श्रवण करवा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वातावरण धीरे धीरे परिवर्तित होगाक लगला कारण आम देखुले जे वर्तमान खरा पड़ा एवं जत गजपति महाराज आसी प्रवेश कले धीरे धीरे धीरे धीरे से खरा चलीगला वर्तमान आकाश मंडल टी कला पड़ा बादल धीरे धीरे एवं यही बादल रे आमे लक्ष्य करुचु जे वर्तमान जेहेतु समय टिके संध्या समय हो जाऊँ तेणु निश्चित भाव टिके किसी परिवर्तन।

0: राजी नुहे
1: तेणु जगन्नाथ पाखे जे सेवक हो रही जेहेतु जगन्नाथ हूँ विश्वर ठाकुर सी हूँ बड़ ठाकुर से मध्य बड़ हो दीनकृष्ण सुंदर पदटे लिखिंट से कहले कोटि ब्रह्मांडे यमंत ठाकुर थिबार शुणीछ काही कुछित लोक ही परम पद ही लभंती जहाँ चाह चाहिदेले कुछित लोक टे परम पद लाभ करुच ये होची आम महाप्रभुंकर ये होची गोटे अत्यंत वैशिष्ट्य कला पर्वतरे विजय सधीरे करुणा हृदय होई कलमसी लोकंकु कलमस पंकु उद्धार करिबा पाई
0: से माने बुझी पारले नहीं से माने बुझी पारले नहीं जे गजपति महाराजा छेरा पहरा को केते बेले आसीबे ताकु लोक माने उद्ग्रीव नयन रे अपेक्षा करथांते ये गोटे कथा द्वितीय कथा जेते बेले छेरा पहरा करथांते गजपति महाराजा ये गोटे पवित्र पावन दृश्य भावरे मध्य महाप्रभु को रथयात्रा भितरे ये गणा हुए ये गोटे साधारण कथा नुहे गोटे असाधारण कथा एवं छेरा पहरा सारिकरी प्रत्येक रथ उपर जितेबले ठिया होकर चारमाल उपरे गजपति महाराजा जनसमुद्र आड़ को चाहिए हाथ टेकिकी समस्त को प्रणाम कर दिखती
1: प्रणाम
0: करती सी हूँ गजपति राजा उड़िया मौणमणि तथापि हाथ जोड़ी मौणमणि बोली इतिहास सीए जिते जोड़ हस्त विपुल जनसमुद्र आगे प्रणत होकर प्रणाम करती जिते उड़िया हृदय द्रवीभूत हो जाए गजपति महाराजा आमको प्रणाम करते किंतु ये जो संस्था अच्छा ये जो तथाकथित इस्कन संस्था यही सुंदर वार्ता यही महत्व ये महिमा को उपलब्धि करने ज्ञान ना कौन करवा
1: भगवान महिमा को किए बा कलना कर भक्त मान को उद्धार करने प्रत वर्ष स्वयं महाप्रभु ये स्नान गुंडी चाहे बेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहर पतित मान को उद्धार करने प्रत वर्ष महाप्रभु प्रासाद रु बाहर होसुचंती जो क्षेत्र टी जो क्षेत्र में आम वर्तमान अच्छे ये क्षेत्र को सी आसुचंती पतित मान को उद्धार करने आसुचंती पतित अर्थात जो मैंने संसार कर्दमा लेप प्रक्षालन पटीअसी संसार कादुआ पोखरी रे जे पड़ी जाइछि एवं से उठी पारुनि से पंक भितर पड़ी जाइछि सड़ी जाउछि उठी पारुनि माया तक ग्रास करुछि एही भली लोक मानंकु दर्शन दे मुक्त करिबा पई महाप्रभु आसुचंती एवं देखिबे जेतेबले से आसुचंती एइठी अछंती तांकर केही नाही से होछ नतस्य कश्चित पतिरस्ति लोके तांकर केही पति नाहंती सी हूँ जगतपति तेणु जगतर सी हेल्ले एकमात्र पति ताकर कहीं पति नाती न चे सीता ताकर कई ईसीता मान प्रशासक नाती किए नियंत्रण कर कंट्रोल कर एक कहारी शक्ति ना न कारण सी कौ कारण अंतर्भुक्त नुह अर्थात यही कारण से जन्म होती एमती किसी कारण ना कारणाधिपाधिप जिते कारण संसार अच्छी सबूर मूल कारण हूँ जगन्नाथ महाप्रभु नचाश्य कश्चित जनिता नचाधिप ताकर कहीं जनिता नाई कि मान जन्मदाता नाई कि अधिप नाई
0: अतीतरे को मसीहाटा मोर मन पड़ूनि अतीतरे राज्य प्रशासन को संभालुवा नेता माने मध्य ए गजपति सेवा को बंद करदे चेष्टा कर गजपति सेवा को बंद करदे चेष्टा कर तार विकल्प व्यवस्था करु जगन्नाथ महाप्रभु जाना अटकी चारमाल से ही गजपति महाराजा आसी शेष परामर्श दिखाई आपण ए व्यवस्था को बंद करें जिते क्षमता थी आपस्था को बंद करें तेणु से पुणी से गजपति आई छेड़ापरा महाप्रभु विजयी कथा घटी तेणु गजपति महाराजा सेवाटा गोटे सामान्य सेवा नुह
1: अच्छा आम सेपट को पठेद से कहतु मु बर्तमान आम द्वितीय केन्द्र जो अच्छा द्वितीय केन्द्र रे वर्तमान विद्वान मंडली को नवेदन करी से वर्तमान धारा बरणी।

0: गीता कहते कर्मन्येवाधिकार अस्ते मा फलेश कदाचन हे अर्जुन तुम्हें कर्म करी चाल फल आशा संचार कर फल अभिमुखी हेब तुम्हें कर्म को ठीक भाव संपादन करदी कर्म ठीक अच्छी तेरे फल तुम पाखे रही कथा को तुम विश्वास एवं भरोसा रख ना कौन कह
1: ठीक सत्य वर्तमान आज जेनतन प्रकार तीन रथ आज निश्चित भाव पहुंचब कारण जहाँ विधि विधान
0: गोटे बृहत काय संकीर्तन मंडली
1: संकीर्तन
0: शताधिक संकीर्तन प्रेमी से माने नृत्य करी आपण माने जानती नृत्य केते बेले हे जाए से माने अनुभव करी पारंती नाही जो माने संकीर्तन
1: वर्तमान धीरे धीरे श्री मंदिर पाखरु लोकारण्य होगला खाली मुंडमाल आउ किछि बात नाही मझीरे जहाँ टिके टिके फांका लगुच जावासवा चलुची संकीर्तन मंडली उदंड नृत्य करई बाहू प्रसारित कर जो भाव नृत्य करुंतर भक्तिभाव नैवेद्य अर्पण कर
0: मृदंग एवं विभिन्न प्रकार वाद्य करताल जो वाद्यर जो झंकार श्रवण
1: करवता टिके टिके बृष्टि करवता प्रणाम कर
0: सेवा कहीं ब्रह्मा डाकुंत देव
1: मणिमा मणिमा
0: इंद्र डाकुंत देव गुहारी सुनिमा तेणु सब सकल सुर सेवा अवसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे समस्त देवगण माने सेवा अर्पण करती महाप्रभु
1: इंद्र देव आउ रही पारे ना से देखिले जे मु भक्ति नैवेद्य अर्पण करी स्वर्ग थी से निजर बारिधारा प्रकाश
0: करुछंती आपण माने जानी आश्चर्य हेबे ए जो वर्षा बिंदु टिके टिके पड़ा अवस्था भक्त मनरे ये जो उन्मादना जो भक्तिर जो प्राबल्य ताहा इत्ते परिमाणे बढ़ी जाउची काहेकि पूरा असंभव कथा वर्षा को कही केतेबेले निज आयत्तरे रखी नाही जे वर्षा करई देबो ये होउची महाप्रभुंकर आयत्तरे रहीची तेणु इंद्र आदि पुष्प वृष्टि करी महाप्रभुंकर दिव्य रथर आगमन को जमिति स्वागत संवर्धना जणाउचंती प्रणाम निवेदन करुचंती आपण कोन कहिबे ए परिवेश को
1: अति चमत्कार अति सुंदर अति अनुभूति संपन्न एबे नबा एक छोट विरति
2: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रही वर्ष यात्री मानक सुविधा पाई ओडिसा विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचल घोषणा करा जायछि एथिसहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानकरे यात्री मानक सुरक्षा पाई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनक सेवारे
3: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपनक जणाउछि असुमारी शुभेच्छा एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानक हाथ तयारी हस्ततंत हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री अपूर्व संभार पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती आसंतु आपणंक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर
4: हाँ, हाँ, ये पसंद आसीबो
5: हां सर आपणंक चॉइस बहुत भल अछि आउ डिजाइन भी नुआ
4: डिजाइन नुआ अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धतार प्रमाण कौठि मिलिबो
5: सचेतन ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किणिबा पूर्वरु बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु
6: वर्तमान राज्य रे ममता ओ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिलित भावरे कार्यकारी करूअछि
7: एही योजना अधीन रे कन्या संतान जन्म करूथिबा महिलांकु उत्साहित करिबा पई पूर्वरु दिया जाउथिबा सहायता राशि 10,000 टंका परिवर्ते 12,000 टंका प्रदान करिबा पई सरकार घोषणा करिछन्ति एही अर्थराशि को हिताधिकारी माने निजे ओ शिशुर स्वास्थ्य एवं पुष्टि रो उन्नति निमन्ते विनियोग करिथान्ति सरकारक निष्पत्ति अनुजाई वर्धित सुविधा 1 एप्रिल 2025 रु लागू करा जायछि
6: एही योजना अधीन रे मिलुथबा सुविधा गुडी कहेउछि कन्या संतान जन्म क्षेत्र रे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 12,000 टंका पाइबे
7: पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 10,000 टंका पाइबे
6: विशेष भाबे अनुन्नत जनजाति समुदाय संप्रदायर महिला मानंकु तृतीय एवं ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେକୌଣସି ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
7: ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
6: ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ wcd.odisha.gov.in ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ମହିଳା

0: पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो यह रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर।
1: आकाशवाणी कटक सुनंतु आमर चलित अधिवेशनर कार्यक्रमर सूचना। संध्या 6:10 गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानसर 88 भाग प्रचार करिबु। संध्या 6:30 ओडिया आलबम गीत शुणिबे, ओडिया कथाचित्र गीत शुणिबे राति 7:02। जिला हालचल आज रहिछि बौद्ध जिल्लार हालचल राति 7:25। पल्ली मंच राति 7:30 एथिरे रहिछि विषय व्यावसायिक भित्तिरे जिया खत प्रस्तुति, ए संपर्कें मीनाक्षी पृष्टिंक सहित आलोचना। हिंदी कथचित्र गीत रही राति 8:02। राति 8:30 इंग्राजी आलोचना कैट्स नो लंगर हाव 9 लाइव्स आलोचना कर डॉक्टर लाला अश्विन कुमार सिंह। सांप्रतिक घटनावली उपर कार्यक्रम रिलेकर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली राति 9:30। नाटक भक्त बालिका दास प्रचार कर राति 10:00। रचना डॉक्टर ब्रजमोहन महांति, प्रयोजना गोपबंधु चौधरी, संगीत राखाल चंद्र महांति। राति 8:15 पार्लियामेंट रिव्यू रिलेकर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली। शुणिले आमर चलित अधिवेशनर कार्यक्रमर सूचना। एथर आसंताकालीर कार्यसूची आसंताकाली सकाळ 6:05 विशेष वंदना कार्यक्रम

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रीराम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्रीराम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: AIR.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य सहैव मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्र संघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन तीव्रः खेदः प्रकटीकृतः। संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी इत्यसौ प्रावोचत् यत् अन्येषु देशेषु एतादृशानां घटनाक्रमाणां संयुक्त राष्ट्र संघेन तीव्र निंदा क्रियते, परंच पाकिस्ताने जायमानेषु एतादृशेषु कृत्येषु अवधानं नैव प्रदीयते। सः शान्तिपूर्ण विवाद निवारण तंत्राणां सुदृढीकरणम् इति विषये आयोजिते सुरक्षा परिषदः मुक्त विवाद कार्यक्रमे भाषमाणः आसीत्। अद्य सर्वोच्च न्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे केन्द्रीय प्रशासनं राष्ट्रीय परीक्षाभिकरणञ्च परीक्षा परिष्काराणाम् अनुष्ठान प्रगतिमालक्ष्य विशद शपथ पत्रम् उपस्थापयितुं समादिदेश। पर्यावरणविदः सामाजिक कार्यकर्तुः च सोनम वांगचुक इत्याख्यस्य 26 दिनात्मकं सुदीर्घम् अनशनम् ह्यः रात्रौ गुरुग्रामस्य एकस्मिन् निज चिकित्सालये विश्रान्तिमगात्। एतदनशनम् जेपी नड्डा जितेन्द्र सिंहयोः गरिमामय उपस्थितौ सम्पन्नम्। वांगचुक वर्येण निगदितं यत् बहुविधानां पक्षाश्रयणामुपरि सुदीर्घ विचार विमर्शस्य अनन्तरमेव एषः निर्णयः गृहीतः। अद्य भारतस्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः भारत रोमानिया देशयोः मध्ये आर्थिक निवेश सम्बन्धानां विस्ताराय आह्वानम् अकरोत्। तया प्रोदीरितं यत् द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये गभीर वाणिज्यिक सहयोगाय अदूषिता अनन्ता च क्षमता विद्यते। विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः मिस्र देशस्य हबीबा रिज्क इत्येताम् 11-7 11-5 11-6 11-9 इत्यंकान्तरालेन पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रं विजित्य उपान्त्य चक्रं प्राविशत्। विजयेनानेन अनाहत सिंहः अस्मिन् विश्वस्तरीय द्वन्द्वे अश्रान्तं द्वितीयवारं उपान्त्यचक्रं प्राप्य प्रथम भारतीय क्रीडिकात्वेन इतिहासम् अरचयत्। सम्प्रति सा खलु स्वर्ण पदकस्य शीर्षक विजयाय परिगणिता वर्तते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक। शुणन्तु ओडिया आल्बम गीत। प्रथम गीत गाई मोहम्मद अजीज।

0: आकाशवाणी कटक।
1: अच्छा दास बाबू, आपण को घरटा 1970 रे तयारी थिला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सही पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: ओडिशा सरकारक समयबाय विभाग तरफ रु राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानको सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसीहा खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी ओ हरड़ चासर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चासी ऋणी ओ अणऋणी चासी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुद्धा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैम्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकड़ जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि ओ समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
0: आरंभ करुछु पल्ली मंच।

0: गंजिया चुनाव हवा चाषी बिना पंजीकरण कराई भोग चाषी रणी और अलरणी चाषी समस्त फसल बिना पंजीकरण निर्धारित तारीख एक जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति तथा पैक्स लैंड बैंक शाखा किंवा जनसेवा केन्द्र में कराई चाषी पिछा पांच एक जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे फ्रंट पिछा केवल एक टंका देवा पड़े अधिक बेदरणी निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेको बैंक शाखा किंवा कृषि और समवाय अधिकारी को जोजोग कर
1: আমার পরবর্তী কার্যক্রম পার্লামেন্ট রেডিও রেকর্ড প্রচার করছি আকাশবাণী দিল্লি।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखिए समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
3: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम

0: कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
1: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
3: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को

0: समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के होंगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त

0: Durante el tiempo de la presidencia, tendré que salvar lo que pasa con la ciudad a la persona que quiera.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस अग्निशमन सेवाएं अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 प्वाइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 प्वाइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी कटक
3: नमस्कार। आज अंतिम मुख्य संवाद सह मु उदयनाथ स्वाई। सिंहद्वार सम्मुखरे लागिला तीनि रथ, आसंताकाली अनुष्ठित होब सुनावेश। तुलसी क्षेत्र

स्कंद पुराणे कहुच्छ सकृत दृष्ट्वा विमुक्त स्यात् किमन्यैः बहुभाषणैः नीलाद्रौ दश वर्षाणि त्रिकालार्चा सुसंजतः। आड़प मंडपरे श्रीजूमानंकु दिवसरे दर्शन कले अशेष पुण्य लाभ होइथाय, रात्रि कालरे दर्शन कले दशगुण फल प्राप्ति होइथाय बोली शास्त्र मानकर लिखित अछि।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर।

दूरक सुंदर पर्व कमल खेतक सुंदर धान निगाड़ी बसाऊ थी बारे एत आम बलिदान।

पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपणंकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मां मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री।

0: कथा कण
1: तमे चालियो टी मैडम डाकछंती
2: की मिनती मैडम
1: हां म आम सुपरिटेंडेंट मैडम
2: कई कण हिची
1: तमे आगे चालियो टी
2: हो चलो रूपा तू पढ़ु था मु आसुची निद माड़ी तो
3: ना कौ दिन मु 11 बजबा आगर सोइलुनि कहलु
1: तमे डाइनिंग हॉल को चल लो आगे
2: हो बाबा चलो चलो
4: काही की आपण माने एमची पार्टी करछंती कहले
3: पार्टी करबनी आ कोनेटी मंत्र जपिबो तमे तो रोसे करछ पुनी निजो को जने निपुण रोसे बोली भाबो देखो ए कोन खाइबा जक्य एगुडा मणीस पिला खांती
4: निया पाही कोथा आगा को सब दिन समान होची
3: आ हा हा सब थरे एमिति गोटे धरा बंधा वाक्य कई तमे हमकु फुलेई दोच
5: देखो हरिबंधु तमे बुढा लोक पुनी एही हॉस्टल सबुटु पुरणा रोसेया

0: रूपा कौन कुछ बनो जा
1: कही नी हुए तो कही भी आगो कहो तुम रूम रे सोइबो ना निज रूम को जीवो
0: तोर जदी किछ आपत्ति न थाए
1: आपत्ति न थाए बोली तू तो जानी छु
0: काहे के जानी बनो जा मते कई दिन होबो एकुटिया रहबा को भारी डर लागु छलो
1: डर
0: मिछ कहुनी बनो जा
1: देख रूपा सब कथा तोर डर क्लास को जीवा को डर लाइब्रेरी जीवा को डर कैंटीन जीवा को डर आ सेसर प्रोफेसर को सहित कथा को भी डर ओफ तोर जदी एत्ते डर विश्वविद्यालय को आसितलु काई कहिलु गाँ पाख कलेज बीए पास कला परे से गाँ तो रही जाइथांतु सेठि बासा हे छुआ जन्म करथांतु
0: प्रकृति रे पनजा तो नथिले बथे मुई कैंपस रे दिने भी रही पर नथांती
1: किंतु मो बापा मा मते ठीक पाठ पढिया को पठाइचंती तो कथा बुझिया को नहि
0: तुम ऊपर रागुछु बनजा तो ऋण मु तो सारा जीवन भी सुझी पारिबिनी
1: से पाजे कथा कहना ऋण फुणा कथा मु किछि बुझेना बरं तू मते एथरो मुक्ति दे तो निज कथा तो निजे संभाल
0: तोर जहा इच्छा
1: ए कोड़े कोड़े चलो
0: आओ कोड़े सही कोठरी को जोटा वर्तमान भाई मोरो
1: चुप बस एठी
0: बोलो जी तो खांतु छु
1: आओ को तते के लेका कांधी असे ना काली भली लागु छि रूपा जोदिना दूर मफसल गाँव रु आसे तो प्रथम करी हॉस्टल रे रहिलु तो सहित मोर परिचय हे नथिला सारा तीय धान बिल पर बहुत सरल दिशा तोर मुहटी तो आखि दीटा भितर भरी रही संकोच साड़ी पिंधि क्लास को जाऊ किए कि थट्टा करते तोर चेहरा देखे मुझे भावुली सत्य को कृषक घर बोहटी भूल क्रमे चली आस कैंपस भर को मन पड़ी दिनकर घटना क्लास सारी हॉस्टल को फेरुली नजर पड़ा लाइब्रेरी सामने रे तथे कई जन पुओ झी घेरे हईराण कर आधुनिकतार गोटे उत्कट फुटाणी बेबेहीन कर दिन
2: हेलो रूपा दया करी ठिया हो तो वाओ रियली वंडरफुल देखिलु पिंकी तो इतिहास बहरे एमती चेहरा खंडे अछि कि नहीं
3: तू ठीक कहिसु सुलता रूपांकर रूपकांति पूरा इतिहास बहरु कॉपी करा हिछि ना कोन सुलता
2: हां सत कहिबु रूपा एटी तो भाउजंक चौठी रति साड़ी ना
4: देत भाउजंकर नुहे म एटा तंक आईंकर
3: नुआ करी पेड़ी रू कढ़ाई
1: कहीं तम मैंने सब मिसे नुआ झीटा को थट्टा परिहास कर
2: थट्टा कहीं करू मो
4: आम तो अप्रिसीएट करूल
1: देख सुलता साड़ी कौन पिंधा जाए नी शुणी आज की तीस वर्ष ते सब झील कलेज को साड़ी पिंधि ही आसते
4: तम माँ मौसी निश्चय
1: खाली मोर नुहे समस्त
3: बर्तमान तू कहू आमने सब साड़ी पिंधु
1: से कथा मु कौन कह पिंधिटा निजर रुचि कथा तेबे दि चार वर्ष पर आम समस्त तो साड़ी ही पिंधा पड़ो
2: बनजा तो बाहर कथा कह पिंकी
4: हाय पिंकी बनजा कथा अनुसार तत तो आई चार वर्ष अपेक्षा करने को हम कण एत दिन तो धर्ज धरी रही पारू तो तू तो आज हकर हकर
3: किसी कथा ना म बनजा तो मोप बड़ खोज दब
1: खोजा को पड़बनि पिंकी तुम धन संपत्ति देखी बर तो आपे आपे तुम गोड़ तल को छुट्टी आसबे
3: देख बनजा तू कहू को अनेक कथा कहलु आम धन संपद उपर टिप्पणी करने तू किए
1: आदि पचारे ए गांवली झीटर दारिद्र विषय टिप्पणी देवा तमें सब किए
2: कहीं अजथ तू गोटे कली आरंभ कर
1: सहित मोर कि संपर्क जे मु तम मान सहित कली करी मु खाली चेत दौचे रूपा मध्य आमरी क्लासमेट
4: आम कौन मना कलु
1: किंतु कहारी गरीबपण को उपहास करिबा आमर संस्कृति नुहे
3: संस्कृति विषय तू आमको शिखेबू
1: संस्कृति समस्त निज घर शिखि था पिंकी कहीं क्या शिखाईनि।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: मेरे प्यारे देशवासियों,
1: हम हमेशा अपनी प्रगति किसी और की तुलना में ही नापने के आदी होते हैं। हमारी पूरी शक्ति प्रतिस्पर्धा में खप जाती है। जीवन के बहुत क्षेत्र होंगे जिसमें शायद प्रतिस्पर्धा जरूरी होगी, लेकिन स्वयं के विकास के लिए तो प्रतिस्पर्धा उतनी प्रेरणा नहीं देती है जितनी कि खुद के साथ हर दिन स्पर्धा करते रहना। खुद के ही साथ स्पर्धा कीजिए, अच्छा करने की स्पर्धा, तेज गति से करने की स्पर्धा, और ज्यादा करने की स्पर्धा, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की स्पर्धा अब खुद से कीजिए। बीते हुए कल से आज ज्यादा अच्छा हो, इस पर मन लगाइए और आप देखिए ये स्पर्धा की ताकत आपको इतना संतोष देगी, इतना आनंद देगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।

0: हम लोग बड़े गर्व के साथ एथलीट सर्गेई बुबका का स्मरण करते हैं। इस एथलीट ने 35 बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। आप भी उसी लिहाज से आगे बढ़े तो आप देखिए, आपको प्रगति के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता है।
1: आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंत आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणु आम आज कार्यक्रम सूचना।

0: अजणा लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने राखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: कार्यक्रम प्रथम गीत गायछन्दी प्रणव किशोर पटनायक कल्पतरु बळंकर रचना।

विश्वकर्ता परम पिता श्रीमान सत्य नारायण देव प्रीति अर्थे बोल प्रेमानंदे कवार विद्या प्रदायिनी शक्ति दायिनी।